0: अशोक साल त ढुक्क नारे बत्ती
1: हाँ त पोर्सालिक बात सम्झोट आम्मिन्दो लक्ती र हटबरा पानी बस्तबेर अस्तिम कहाँ र सिक्जाए त सोचो त ल ठिक ठिक कम घर डान डान पानी बर्ष टिकी मन छटपटाए लाग
0: हाँ त धन्न ब्यालम्ब ढिक ढिकम से सुरक्षित ठाउँमा सरली नारी बत्ती
1: हाँ हो बदा
2: बर्खक ब्यालम बह्य ढ्यार जोखिम रहत उह मार बहिया से बचकला पहिले हाँ सावधानी अपनाए लद्या खोलम पानी बरल बाकल से सावधान रही एम्बुलेंस सुरक्षा निकाय स्वयं सेवगन के संपर्क विवरण तक सूची बनाई एकचोटे प्रयोग के लाग झटपट झोला तैयार पारी वो बरखक ब्यालम संक्रमण के डर ढ्यार हुलकोर से पानी ढिका के पी स्वच्छता में ख्याल करी
3: प्लान इंटरनेशनल नेपाल ओ भेरी वातावरणीय विशेषता समूह बी ग्रुप की साझेदारी में बर्दिया जिला में संचालन हुई रहल विपद पूर्व तैयारी उत्थानशीलता तथा सबलीकरण परियोजना द्वारा जनहित के लाग जारी संदेश
4: तपाई सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो टाइगर 99.2 मेगाहर्ज गर्जन सधैं बाजिसै

0: जीतपुर वाली यह साल तो निश्चिंत हो गवा गए।
1: हाँ तब परसलिए याद करो तो जू डराए लागत है। पानी जब बरसत रहा तब इतना आनंद से कहाँ बैठे मिलत रहा। सोचो तब नदी किनारे के घर पानी पड़े लागे कि जू घबराए लागत रहा।
0: हाँ तो भले सही समय पर नदी के किनारे से सुरक्षित जगह पर चल गवा।
2: बरसात के मौसम में बाढ़ के खतरा ज्यादा होत है, यही नाते बाढ़ से बचे खर्ती पहले से तैयारी और सावधानी अपनावा जाए। नदी नारा में पानी अगर बढ़ा है तो सतर्क हो जावा जाए। एम्बुलेंस, सुरक्षा निकाय, स्वयं सेविका सब के संपर्क करे सूची तैयार पारा जाए। एकाएक जरूरत पड़े वाला सर सामान के झोला तैयार रखा जाए। सतवे बरसात के समय में रोग लागे जोखिम ज्यादा हो नाते पानी उबाल के पिया जाए, सर सफाई में ध्यान दिया जाए।
3: प्लान इंटरनेशनल नेपाल और भेरी वातावरणीय विशिष्टता समूह बी ग्रुप बांके के साझेदारी में बर्दिया जिला में संचालन हुई रहा विपद पूर्व तैयारी उत्थानशीलता और सबलीकरण परियोजना द्वारा जनहित के खातिर जारी संदेश।
4: तपाई अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो टाइगर 99.2 मेगाहर्ज गर्जन छ सधैं।

0: तो चून तरा दो नशेक वो जार बरा दो मधुआ है पार लगा दो बोतल नहीं तो अट्ठा भरा दो
1: का चिंता कर छो लाही बेच के चिरम यार।

0: गगरीमा गेल फुले भक्रीमा भाग्से ठिक्केमा बेघुन बुढिया छभाग्से मारल बुढौवा लात भराक्से गिर्नु नाते मै झभाग्से
1: अरे जार वचल तपट पैनु या।

0: बजाइ बो चन्नी गरी ना होटल में आई बो सहने पति ना मुर्गी बोलते से मुन की पिराई ना तारो ने पी बो जीव थसराई ना
1: अरे क्यों तो बताओ यार इमरवन की जिंदगी कैसी को जीना।

0: रेडियो टाइगर 99.2 मेगाहर्ज।
1: रेडियो टाइगर स्टूडियो टाइम। यति बेला साँझको 6 बजेको छ। राष्ट्रको शान किसान।
2: A complete piping solutions।

बजो ए दाए मादल बजो ए भाई सनई बजो ए दाए मादल बजो ए भाई घिन घिन घिन घिन घिन मादल रंकाए रंकाए।